घर छोड़ी गाँव घूमन जानुन्न बाघ भालू गैंडा हाथी चितुआ पसे पछि धन जन को

मैं खड़ेरी ढूर बनकर भुर्र उड़तू तब तू मोरलाक पानी बनकर मर सकते। एक घची के मिलन के बाद वो एक काम के प्रकाश तू इन बाफ बनाकर उड़ाकर फिर से मन से दूर ले जा। ये प्रकृति के नियम हमा मिलन असंभव कारण तू बद्री मैं धरती। हाँ वो एक दूसर से दूर रख पे करल कब्बुनी और रेना मैया के एक उदाहरण हो दिल के पता। वो एक अटूट मैया के अंश हो दिल के पता।

0: नमस्कार हो नमस्कार नाई, ये बुढ़ौती में बूढ़ा बूढ़ी का बात कही जाता। अका होई डॉक्टर नी बहनी, बड़की पतोहिया दुई जीव के भाई बाई, ओकरे देख रेख के जोगाड़ खोजल जात बा। आहा, ई होखे न तरीका सास ससुर के। हाँ तब का, पेट में बच्चा रहले के बाद दुई वर्ष के जब तक नाई हो जाले, ई हजार दिन में अम्मा और बच्चा के पोषण युक्त खाना खियाए के चाही और सर सफाई के बारे में ख्याल कइल जाला, तब बच्चा और अम्मा के दोनों जनी के स्वास्थ्य ठीक रही।
1: देखा, पाथर खोजत के भगवाने मिले जैसन हो गई। और का करे पड़ाला डॉक्टराइन बहनी तनी बता दाता।
0: ठीक बा, सुनल जाए, रेडियो में लगातार बाजत बा।

निर्णय पश्चिम नेपाल का पहिरो प्रभावित क्षेत्र में भौगोलिक अध्ययन गरिने र व्याकरण अल्ट्रा 2026 में अर्जुन कुलुंग राई र मंजू सुनवार पहिलो अवस्था साँझ 7 बजे को हालखबर सकियो। शांति समृद्धि र रूपांतरण का लागि सुन्दै रहनुहोला रेडियो लुम्बिनी। नमस्कार।

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364060।
1: Bir de sen de komu